0: यो का ट्रेडिशनल मैंने कह बिल्मा का ये डेक में एवरीडे 5 AM का 6 PM तेना लियो लॉन्ग रेडियो
1: आ ऑनेस्ट गिव मी सम मनी
2: या या वी कैन स्पॉट ऑन
3: 6 5 4 3 2 1